साक्षी सचिया सागा पिसा चो लसु दकानो ओपा ओपा चो लसु दकानो खाला लिखे मिस्ती कर दिया ली देख जाना बानो पालेप सास्ती नागा पिमास पालेप सास्ती नागा पिमास।